0: तो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने बदनों पर बहिष्ट के पत्ते चिपकाने लगे और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मतलूब से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई।
1: بعضكم لبعض عدو

बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपनी परवरदिगार की तस्बीह तहमीद किया करो और रात की साआत अव्वलीन में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन की अतराफ यानी दोपहर के करीब जोहर के वक्त भी ताकि तुम खुश हो जाओ।

कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

गुनाहगार अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाएंगे तो पेशानी के बालों और पांवों से पकड़ लिए जाएंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? यही वो जहन्नम है जिसे गुनाहगार लोग झुठलाते थे। वो दोजख और खौलते हुए गर्म पानी के दरमियान घूमते फिरेंगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। To the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म कतर के एक रोजा दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के जरिए अपनी सरमाए की मंडी को मजीद मौसर सरमायाकार दोस्त बना रहा है। तरफ दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई 1931 के शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के साथ तिजारत पर पाबंदी के इकदाम पर गौर व खोज के लिए यूरोपीय यूनियन के वज़ीर-ए-खारजा का इजलास आज ब्रसल्स में होगा।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म कतर के एक रोजा दौरे पर दोहा रवाना हो गए हैं। मनसूबाबंदी के वजीर ने कहा है कि हुकूमत तरक्याती खराजात में इजाफे और महंगाई पर काबू पाते हुए इक्तिसादी इस्तेहकाम की हिकमत अमली पर कामयाबी से अमल पैरा है। बलूचिस्तान में जारी मुश्तरका ऑपरेशन शाबान के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 दहशतगर्द खवारिज को हलाक कर दिया है। और लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी 13 जुलाई 1931 के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम शोहदा कश्मीर मना रहे हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म दोहा में हैं, जहां वो अमीर कतर से उनके वालिद शेख हमद बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान का आइन जिंदगी के हर शोबे में ख़वातीन की मुकम्मल शिरकत की जमानत देता और इसे यकीनी बनाता है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में ख़वातीन से मुतालिक नवी OIC वजारती कॉन्फ्रेंस की सदारत संभाल ली है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is FM 101.
1: हर बात की एक अलग कहानी होती है और अब आपकी बातों का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। खुलकर बात करें हमारे PTCL मोबाइल लाइट पैकेज के साथ। आपको मिलेंगे 300 मोबाइल मिनट्स सिर्फ 300 रुपए महीने में। अभी कॉल करें 1218 और मोबाइल लाइट को सब्सक्राइब करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं।
0: This is FM 101.

अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, क्या हाल चाल है आपके? आई होप कि आप सब ठीक ठाक फिट पारे बनोगे। ऑलराइट जी, मैं हूं आपके साथ हसन रजा, ऑल द वे फ्रॉम हिट ट्रॉट रेडियो स्टेशन ऑफ पाकिस्तान, दैट इज एफएम 101, और आप इस टाइम सुन रहे हैं 101 इंटरनेशनल सांबा स्टूडियो से। ऑलराइट जी, हमारी वाद सेम सुनी जा रही है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, सियालकोट, क्वेटा, हैदराबाद, कराची और पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली आप हमें इस टाइम सुन रहे हो radio.joy.pk पर। इसके अलावा जी बहुत सारे दोस्त इस टाइम हमें मोबाइल इंटरनेट पे सुन रहे हैं radio.joy.pk/mobile पर, और अगर तो आप अपने रेडियो सेट से मोबाइल सेट पे सुन रहे हो, या तो रात के इस टाइम आप ड्राइव कर रहे हो साथ अपने ट्यून के प्योर पाकिस्तानी चैनल FM 101 इंटरनेशनल को, तो जी आप तमाम दोस्तों को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। ऑलराइट जी, सबसे पहले डे चेंज हो चुकी है, आज 14th of July 2026 ट्यूजडे स्टार्ट हो चुकी है। हमेशा के लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि ट्यूजडे का सारा दिन आपको बहुत अच्छा गुजरे, और उम्मीद करते हैं कि वीक का स्टार्ट जाने के मंडे आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा जैसे कि आपने सोचा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो कोई बात नहीं, आने वाले दिनों को अच्छा बनाओ, क्योंकि अगर एक दिन अच्छा नहीं गुजरता तो इसका हरगिज़ यह मतलब नहीं है कि आपके आने वाले दिन पूरा हफ्ता जो है अच्छा नहीं गुजरेगा। सब डिपेंड करता है आपके माइंड सेट के ऊपर, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा, तो अच्छा है ना आप पॉजिटिव सोच के लाइफ को अच्छा बना लो। एनीवेज, यू और बताएं कि पिछला पूरा हफ्ता आपका कैसा गुजरा, उससे जो पिछला हफ्ता था वो आपका कैसा गुजरा, और क्या करते रहे हो आप, कहाँ घूमते फिरते रहे हो, और यकीनन आपने अभी कुछ देर पहले जैसा मौसम जो है वो बन रहा है, अभी मैं घर से बाहर निकला तो हल्की हल्की बारिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा प्रोग्राम है शायद इसलिए बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जहाँ पर मेरा घर है सिर्फ वहाँ पर बारिश हो रही थी। लेकिन अभी जब मैं रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग के अंदर एंटर हो रहा था तो कुछ मुझे ऐसा लग रहा था अभी कुछ देर में या एक आध घंटे तक जो है वो हल्की हल्की बारिश जो है वो हो सकती है। ठंडी हवाएं इस टाइम चल रही हैं और मौसम काफ़ी खुशगवार है, और साथ हमारा शो FM 101 इंटरनेशनल। वो तो आपको पता ही है, फिर मेरा शो होता है तो फिर मौसम जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादातर ऐसा होता है कि अच्छा हो जाता है, ये मैं वैसे नहीं कह रहा, ये बात है, मान ले, अब तो मान ले जो नहीं भी मानते। एनीवेज, ये आजकल फीफा फुटबॉल का सीजन जो है वो फुल ऑन है और सारे अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में मैंगोज का सीजन जो है, आमों का सीजन जो है वो ऑन हो गया है, और जैसे आप जितने शौक से आम खाते हैं इस तरह पूरी दुनिया में लोग जो है वो शौक से फुटबॉल जो है वो देखते हैं, और बहुत सारे लोगों के फेवरेट टीम्स जो हैं वो बाहर हो चुकी हैं, लेकिन मेरी टीम अभी तक खेल रही है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, अर्जेंटीना, सो इसलिए मैं तो खुश हूँ, इसलिए मैं तो कोई ऐसी बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी इतना बड़ा मैच आने वाला है, मतलब कि कल रात अब तो मतलब आज रात जो होगी, आज रात को 12 बजे जो है वो फर्स्ट सेमीफाइनल है फ्रांस और स्पेन का, वो भी बहुत जबरदस्त मैच होगा, लेट्स सी कौन विन करके फाइनल में जाता है, और फिर कल रात को 12 बजे जो है वो अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड, एक बहुत ही जबरदस्त टफ मैच, और एक ऐसा मैच जो कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया देख रही होगी कल रात को। और इस बार इंग्लैंड की टीम को आप बिल्कुल भी ये नहीं इजी नहीं ले सकते, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इस टाइम बहुत स्ट्रांग है और अर्जेंटीना अपनी साइड में बड़ी स्ट्रांग है, सो हम तो अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन इंग्लैंड इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। सो खैर जी, फुटबॉल के हवाले से कुछ और बातें करेंगे हम अभी नहीं शो में, आगे चल के आप बताएं कहाँ घूम फिर रहे हैं। अभी लास्ट वीकेंड में मैं देख रहा था सारे पाकिस्तानी ऐसा लगता है घूम फिर ही रहे हैं, मतलब कि जब थोड़ा मौसम गर्म हो जाए और साथ वीकेंड आ जाए तो यहाँ से इस्लाम और रावलपिंडी से लोग जो हैं वो नथियागली की तरफ निकल जाते हैं, या मरी की तरफ निकल जाते हैं, या नॉर्दर्न एरियाज निकल जाते हैं, और सारों की पिक्चर जो है सोशल मीडिया के ऊपर नजर आ रही होती हैं कि यार सारे जो हैं वो मजे कर रहे हैं, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं और छुट्टियों को इंजॉय कर रहे हैं जो कि आप ले लेते हैं ऑफिस से या स्कूल से।
चले जी, अच्छा है जब आपको मौका मिले, टाइम मिले तो जरूर घूमना फिरना चाहिए। पैसे जो है जो आप सेव करते रहते हो उतने टाइम के लिए लगा देने चाहिए, और क्योंकि वक्त वापस नहीं आता ना, मौसम वापस नहीं आता, और फिर ये रूटीन वापस नहीं आती, और ये मोमेंट्स जो हैं वो वापस नहीं आते। इसलिए तो कहते हैं हर मोमेंट को खूब इंजॉय करना चाहिए, अगर आप नहीं करते। सो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि लाइफ में जो मर्जी चल रहा हो, लेकिन वो जब घर से बाहर निकलते हैं ना, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, और वो सब कुछ घर के अंदर बंद करके आ जाते हैं। इस तरह जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह जिंदगी में प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, इस तरह लोगों को फेस करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। अच्छा वैसे अभी मैं स्टूडियो में बैठा हुआ, एसी इतना तेज लगा हुआ, कभी कभी इतना तेज हो जाता है तो ऐसे लगता है जैसे सर्दियां जो है वो वापस आ गई हैं, और कभी ऐसा होता है कि लग पता जाता है।

एनीवेज ये प्रोग्राम स्टार्ट में आपको बता दूं किस तरह प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो लाइव कॉल्स के लिए हमेशा की तरह हमारा नंबर है 0511111 एंड दूसरा नंबर है 0519202540 आप प्रोग्राम में एसएमएस मैसेजेस के थ्रू पार्टिसिपेट करोगे अभी से मोबाइल फोन की एसएमएस की ऑप्शन में जाओ वहां पर लिखो 101 एक स्पेस दो अपना मैसेज नाम शेयर के नाम लिखकर 4471 यानी कि 4471 पर आप तमाम अपने टेक्स्ट मैसेज हमें सेंड करोगे इसके अलावा फेसबुक पे ऑफिशियल फैन पेज हमारा ज्वाइन करो www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान जहां पर आपको अभी के शो वाली पोस्ट नजर आएगी कि 12 to 2 AM आपको मेरा साथ रहेगा एफएम मोरवा इंटरनेशनल में वहां पर अपने कमेंट्स और फीडबैक जरूर दीजिएगा और खासतौर पर हमारे वो दोस्त जो कि पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुनते हैं वो फेसबुक के थ्रू इजीली प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो इंतजार किस बात का है आपको मैंने तरीके बता दिए आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो सिर्फ लाइव कॉल जो है आपकी 12:40 के बाद प्रोग्राम में शामिल होंगी उसके अलावा आप 4471 पर टेक्स्ट सेंड करो फेसबुक पे मैसेज सेंड करो और बताओ ना हमें कि लाइफ में क्या चल रहा है क्या हो रहा है क्या कर रहे हो यकीनन रात के इस टाइम जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे होंगे सोच रहे होंगे यार आज का दिन जो है वो गुजर गया है और कल क्या क्या काम करने हैं फिर बहुत सारे लोग जो है इस टाइम आराम से बैठे होंगे थक हार के चाय का कप जो है गर्म गर्म उठाया होगा या कॉफ़ी उठाई होगी और उसको इंजॉय कर रहे होंगे और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब कि जिस तरह मैं कहता हूँ ग्रीन टी पी रहे होते हैं कावा पी रहे होते हैं उनको वो पसंद है सो मतलब कि टाइम ऐसा होता है कि आप रिलैक्स कर रहे होते हो आप बस कहते हो सारा दिन के शोर शराबे से हट के आराम से आप बैठो और ये जो वक्त होता है इस पल इस ये जो वक्त होता है ये आप अपने आप को दो और अपने साथ जो है थोड़ा वक्त गुजारो और जिसमें आप म्यूज़िक भी सुनते हो जिसमें आप टीवी भी देखते हो रेडियो भी सुनते हो और सोशल मीडिया भी इस्तेमाल कर रहे होते हो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर जो है वो गपशप भी लगा रहे होते हो एनीवेज बातें आपके साथ चलती रहेंगी और अभी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ट्रैक में अप्लाई करने जा रहा हूँ फर्स्ट ट्रैक जी हाँ अली जफर और अली हैदर की आवाज में ट्रैक जालिम नजरों से एफएम 101 इंटरनेशनल में सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा जैसे मैं कहता हूँ अगर आपका दिल कर रहा है चाय पीने को ग्रीन टी पीने को कॉफी पीने को जल्दी से जाओ सॉन्ग भी प्ले हुआ हुआ है बनाओ और एक कड़क चाय का कप मेरे लिए भी होना चाहिए सो एंजॉय कीजिएगा मेरा नाम हसनैन रज़ा आपको मेरा साथी का ठीक रात के 2 बजे तक सो हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद

और मैं जी ओ जाने जाना मर जाऊंगा। आप सुन रहे थे अली जफर और अली हैदर की आवाज में जिस ट्रैक को दोबारा से भराया अली जफर ने अली हैदर के साथ, और बहुत सारी मेमोरीज हैं इस ट्रैक के साथ। और जब ये ट्रैक जो है ओरिजिनली आया था, बहुत पुरानी बात है, सो उस टाइम ये चार्ट्स पे काफी टाइम के बाद जो है वो नंबर वन पे रहा था। तो खैर जी, आप कह लें कि जिस हर चीज की कोई लाइफ होती है, लेकिन बहुत सारे सॉन्ग्स हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है। आप कभी भी उनको सुनते हो तो आपके दिल को बहुत अच्छा लगता है, और जैसे मैंने कहा बहुत सारी मेमोरीज जो है वो रिकॉल हो जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज के प्रोग्राम में सवाल क्या मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, ताकि आपका फीडबैक जो मेरे पास आए तो आप उस हवाले से कुछ ना कुछ बात लाजमी करो। अच्छा, आपने आज के प्रोग्राम में मुझे बताना है कि अगर आपको दुनिया में से कोई एक चीज खत्म करने का मौका मिले तो वो क्या चीज होगी। ठीक है, मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर दुनिया में से किसी एक चीज को खत्म करने का आपको मौका मिले तो आप किस चीज को खत्म करोगे, क्या चीज दुनिया से रिमूव करना चाहोगे। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर, और मुझे बताना है कि अगर आप दुनिया से कोई एक चीज खत्म करना चाहो या रिमूव करना चाहो तो वो क्या चीज होगी। और मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जो जो लिसनर्स जो हैं मुझे इस टाइम सुन रहे हैं, सबका एक एक मैसेज जो है लाजमी प्रोग्राम में आना चाहिए, चाहे वो 4471 पे हो, चाहे वो फेसबुक पर हो। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि लास्ट वीक जो है प्रोग्राम करने क्यों नहीं आया था। कुछ ऐसा हुआ था कि फ्राइडे को मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सो जिसकी वजह से मैं सैटरडे को भी ठीक नहीं था, संडे को भी ठीक नहीं था, और मंडे को मैंने 9 बजे तक मैंने थोड़ा देखा कि मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं शो कर सकता हूँ, लेकिन यकीन माने कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, उठने की भी हिम्मत नहीं थी। सो कहीं जाकर मैं बैठने से थर्सडे को थोड़ा बहुत रिकवर किया मैंने, और सो इसलिए मैं शो करने नहीं आया था। और आपको पता है मैं उस टाइम शो करने नहीं आता जब वाकई मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है। और सो मैंने रीज़न आपको बता दिया, क्योंकि आई नो के बहुत सारे लिसनर्स जो पूछेंगे आप कहाँ पर थे, क्यों शो आपने लास्ट वीक नहीं किया।

जी अभी प्रोग्राम में एक ट्रैक प्ले करते हैं और ट्रैक जो मैंने आपके लिए क्यू किया हुआ है कौन सा है, बिलाल सईद की आवाज में ट्रैक मिसअंडरस्टूड। सो ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और जो दोस्त इस टाइम रात के ड्राइव कर रहे हैं स्पेशली मोरवे हाईवे पे, आपसे हमेशा की तरह की बात करना चाहेंगे, प्लीज ड्राइव केयरफुली एंड सेफली एंड कीप लिसनिंग।

ओके लोकल लिसनर्स, वेलकम बैक एट एफएम मोरो इंटरनेशनल में। आपसे मैंने पूछा ये कि मुझे बताओ कि अगर दुनिया से कोई चीज आपने रिमूव करनी हो या खत्म करनी हो, वो क्या ऐसी चीज होगी। सो आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हो 101 स्पेस मैसेज नाम शेयर के नाम लेकर 4471 पर साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101channelpakistan और लाइव कॉल्स 12:40 के बाद आप प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे 051111111 एंड 051920252 पर 4471 पर साथ फेसबुक पे www.facebook.com/fm101channelpakistan।

जहाँ पर कुछ लड़के आकर वो पूरी दुकान जो है वो खाली करके चले जाते हैं। और मैं ये बात सोच रहा था कि यार जब इंसान कोई बिज़नेस शुरू करता है, चाहे वो छोटा बिज़नेस हो या बड़ा जैसा भी हो, तो वो कितने दिल के साथ कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। कब समटाइम्स उसको लोगों से पैसे पकड़ने पड़ जाते हैं, बोरो करने पड़ जाते हैं, और एक दुकान बनाने में बड़ा दिल चाहिए होता है। और बड़े दिल के साथ आप एक सेटअप बनाते हो अपना, और आपको पता होता है कि यार ये मेरे जो है ना, यहाँ से रोज़गार है और इसके ज़रिए जो है वो पैसे मैं अर्न करता हूँ। और कल जब मैंने वो वीडियो देखी, वहाँ पर जिस तरह लड़के जो है वो दुकान तोड़ के मोबाइल फ़ोन जो है वो लेके जा रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यार क्या हो रहा है यार दुनिया में, या हमारे मुल्क में ये क्या हो रहा है। इसी तरह मैंने फिर कुछ और मैंने पिछले दिनों वीडियोस देखी जहाँ पर गन पॉइंट के ऊपर जो मोबाइल फ़ोन जो है वो छीन लिए। और मैं सोच रहा था कि यार इंसान कितने शौक के साथ जो है वो मोबाइल फ़ोन खरीदता है, उसके लिए पैसे जोड़ता है, और कितनी सेविंग्स करता है, और एक सेकंड में मतलब आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो चोरी कर लिया जाता है। अब इसी तरह मतलब के गाड़ियाँ शीशे तोड़ के गाड़ियाँ स्टार्ट करके मतलब लेके जा रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया के दौर है ना, आपको हर चीज़ जो है वहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह बच्चों के हवाले से जो आजकल वीडियोस जो हैं वो सामने आ रही हैं कि बच्चों के साथ ज्याती जो हो रही है, और वो लोग जो हैं वो पकड़े भी जा रहे हैं। मेरी मेरी गवर्नमेंट गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ जो भी बच्चों के साथ ज्याती में इन्वॉल्व है उसको देखिए तस्दीक करके, ठीक है, तस्दीक करके, ठीक है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको एक बार सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ताकि हम सबके बच्चे जो हैं वो महफूज रह सकें, ठीक है। और देखिए अब ऐसा ऐसा दौर आ गया है, अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए, लेकिन के बच्चे जो हैं वो माँ बाप अपने बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते, ठीक है। हमने जो वक्त गुजारा है उसमें हम स्ट्रीट्स में खेला करते थे और हम स्ट्रीट्स में टाइम स्पेंड किया करते थे, लेकिन आजकल ऐसा दौर आ गया है कि पेरेंट्स कहते हैं कि यार बच्चे घर में रहें, या अगर बाहर जाना भी है तो वो हमारे साथ जाएं, या घर में कोई बड़ा घर है उसके साथ बाहर जाएं, और अगर खेलना है तो वो सामने उनके सामने खेलें। तो अकेले बच्चों को बाहर भेजना बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह की वीडियोस मैंने पिछले 3-4 महीने में देख ली हैं, तो यकीन करें कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है कि ये मतलब हमारे सोसाइटी में ये हो क्या रहा है। और जब तक इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, और इन इन लोगों को एक आप कह लो कि इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा, उस टाइम तक ये नहीं रुकेंगे। उन्हें पता पता है कि हम बच जाएंगे। इसके लिए सख्त से सख्त कानून भी होना चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा भी होनी चाहिए। और अब इसी तरह आप देखो ना, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो हैं आप जब देखते हो तो ऑब्वियसली आपका दिल जो है वो दुखता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। छोटी छोटी बात के ऊपर मतलब कि आप कहीं कहीं जा रहे हो और आपने किसी को टाइम दिया हुआ है, और आपको एकदम से कोई आता है गन आपके पीछे रख देता है और आपको वॉलेट लेके चला जाता है, उसके अंदर कार्ड होता है, फिर कितने एटीएम मशीन के पास वीडियोस आपने कितनी देखी हैं। मतलब ये मैं वो बातें कह रहा हूँ जो देख के तकलीफ़ होती है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। और हम लोग इतने नेगेटिव माइंडेड जो है हमारी सोसाइटी में लोग कहाँ से आ गए हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। और मतलब कि देखो हर कोई जो है वो बड़ी एफर्ट कर रहा होता है ज़िंदगी में, बड़ी स्ट्रगल कर रहा होता है, आपको नहीं पता होता। मैंने जिस तरह शो के स्टार्ट में कहा कि एक मुस्कुराहट के पीछे जो है कितनी तकलीफ़ होती है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। प्लीज़ यार, अगर मेरी आवाज़ कहीं तक पहुंच रही है तो यार फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। देखो कल को आप पकड़े जाओगे, फिर आपको सज़ा मिलेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको आपको पछतावा होगा। पछतावे से बेहतर है कि यार कोई आप मेहनत कर लो, एफर्ट कर लो। आजकल तो देखो वो पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में। आजकल के नौजवान जो हैं वो तीन तीन चार चार जगहों से उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो अर्निंग कर रहे हैं। सोसाइटी में एक तो पॉजिटिविटी फैलाओ, ठीक है, पॉजिटिविटी लेके आओ, पॉजिटिव बातें किया करो,
और देखो सोशल मीडिया का तो आप उस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा यार जब टीवी

चैनल्स जो है ना उनको एटलीस्ट इतना चाहिए कि यार हर टाइम की नेगेटिव न्यूज़ जो है ना वो अच्छी नहीं लगती है। आप यकीन करें मैंने टीवी देखना छोड़ दिया इसी वजह से कि जब आप टीवी लगाते हो तो न्यूज़ चैनल लगाओ तो उसके ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे आप नेगेटिव न्यूज़ देखने के लिए जो है आपने न्यूज़ चैनल लगाया है उसके ऊपर कोई मतलब पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो 1% होती है, 99% जो है वो नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो आपका दिल करता है फ़ौरन बंद कर दो यार, कोई अच्छी चीज़ देख लो, यूट्यूब पर जाकर कुछ देख लो, हंसी मजाक वाली चीज़ जो है। तो लोगों को सोसाइटी में मतलब के चेहरे पे मुस्कुराहटें लेके आओ, ना कि लोगों को सीरियस से सीरियस तर करते रहो। और क्योंकि लाइफ जो है वो जिस तरह गुजर रही है, जिस तरह आगे जा रही है, जिस तरह लोगों के चैलेंजेस हैं, जिस तरह लोगों की स्ट्रगल्स हैं और जिस तरह लोग जो है वो लोगों के ख्वाब हैं, सो उसमें मतलब कि आपका इंटरनली जो है वो खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो उस टाइम मुमकिन है जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव बातें सुने और आपके दिमाग में हो कि मैंने यार ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना है, कुछ किसी मुकाम पे पहुंचना है, कुछ करना है। और क्योंकि लोग तो नहीं रुकते, जो लोग कामयाब हैं आजकल आप देखो वो तो नहीं रुकते, वो तो किस एक सेकेंड जो है अपना वेस्ट नहीं करते हैं।

0: और जी ट्रैक सुने थे आप कभी मैं कभी तुम से। और अच्छा ये ट्रैक जो है उसे बड़ा अच्छा है, मुझे बड़े टाइम के बाद जो है ना कोई ट्रैक ऐसा लगा जिसके लिरिक्स बड़े अच्छे हैं, मतलब इतने कोई मुश्किल नहीं है, इतने कोई सोचने वाले नहीं है, बड़े सिंपल से हैं। और इसलिए कभी कभी इस ट्रैक को मैं प्रोग्राम में शामिल भी कर लेता हूँ। एनी वैसे आपसे मैंने पूछा, मुझे बताएं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसे आप दुनिया से रिमूव करना चाहोगे, ख़त्म करना चाहोगे। सो अभी आप ही लाइव कॉल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी लाइव कॉल जो है हम साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे 0511111 एंड 0519202540 पर। अच्छा सारा हमारे साथ लाहौर से पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ तक लालच खत्म हो जाए, शायद दुनिया में कोई ना इंसाफी ना हो, लालच खत्म हो जाए। लालच तो लोगों में बढ़ती जा रही है, ख़त्म कैसे होगी? यही बात तो हम भी सोचते रहते हैं कि यार ये लोगों को हो क्या गया है, क्यों इतने लालची हो गए हो यार। और आपने कहा कि साथ कैलोरीज का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए ताकि जो दिल करे वो खाएं और वेट बढ़ने का कोई डर ही ना हो। ऐसा तो नहीं हो सकता, कैलोरीज का कॉन्सेप्ट तो ख़त्म नहीं हो सकता। आपको अपनी पड़ी हुई है ये आप बताएं ना कि आपका दिल करता है कि सब कुछ खा लें और ताकि जो है सारा कुछ जो है वो ठीक हो जाए आपके लिए, सही है। लेकिन कैलोरीज देखो आजकल फिटनेस का दौर है, जो आप फिट नहीं रहेगा वो फिर मतलब मज़ा नहीं आता ना फिर। तो हर कोई जो है कैलोरीज इनटेक का ख्याल जो है बहुत ज़्यादा रखता है कि आप क्या खा रहे हो। और ये जो पहले एक टाइम हो गया था लोग निहारियाँ खा रहे होते थे, नान खा रहे होते थे, पराठे खा रहे होते थे और वो तेल वाले सालन खा रहे होते थे। अब लोग कहते नहीं यार हेल्थ कॉन्शियस जो है हम ज़्यादा हो गए हैं तो अब हम दे के खाएंगे। सो हर एक के गोल्स होते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अच्छी बात है। और क्योंकि आप देखो जिस तरह सोशल मीडिया का दौर है ना, तो हर कोई ना अपनी पिक्चर्स लगा रहा होता है, वीडियोस लगा रहा होता है और लोगों को दिखा रहा होता है देखो यार मैंने अपने आप को कितना फिट रखा हुआ है कहीं ना कहीं से। अच्छा रोजी शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट करिए, आपने कहा कि करप्शन को ख़त्म करूँगी। वैसे आपने ठीक कहा कि न्यूज़ बहुत टेंशन वाली ही होती हैं और ड्रामास में भी पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है, हंसी मजाक तो नहीं होता। ठीक है करप्शन को आप ख़त्म करना चाहती हैं, ठीक हो गया। सबसे पहले जो हमारे इर्द गिर्द की करप्शन जो है ना उसको ख़त्म करें, है ना, और फिर हम आगे सोच सकते हैं कि आगे और क्या क्या चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। फिर जी आयशा बुतगुल से लाहौर से पार्टिसिपेट करें, आपने कहा लोगों के अननेसेसरी ओपिनियंस और इंटरनेट प्रॉब्लम्स। अच्छा ये इंटरनेट प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये इंटरनेट की प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या होती हैं। और लोग तो देखो अपनी ओपिनियंस जो हैं वो लाजमी देंगे और लोग तो कभी खामोश नहीं रह सकते, और जो खामोश रह जाए वो फिर क्या लोग होंगे, है ना। अच्छा रब नवाज़ अहमद हमारे साथ, मैं पैसे को ख़त्म करना चाहता हूँ दुनिया से ताकि सब एक जैसे हों। ठीक है लेकिन पैसे को आप ख़त्म कर नहीं सकते, ठीक है लेकिन मान लेते हैं आपने जवाब दिया पैसे को ख़त्म करना चाहेंगे। यार पैसे को ख़त्म करेंगे तो लोग फिर चीज़ें खरीदेंगे कैसे, ये तो मुझे बताओ। सो लोग इतनी मेहनत पैसे के लिए कर रहे होते हैं ना, पैसे आ जाए बस, पैसे पैसे ही पैसा हो सो वो इसलिए करते हैं ना कुछ खरीदना होता है, पैसे खर्च करने होते हैं। तो फिर जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर लोग एफर्ट किस चीज़ के लिए करेंगे, हाँ, या पैसे जो हैं वो सिर्फ आपके लिए ख़त्म हो जाए दुनिया से, हैं ये भी सही है ना रब नवाज। तो बाकी सारे जो हैं वो पैसे जो है बढ़ाते रहे और आपके लिए पैसे जो हैं वो दुनिया से ख़त्म कर दिए जाएं।
1: उतार दो तुम किताबों में कहानियाँ, किस तरह से कट रही है मुझ पे क्या गुजर रही है तुमने जाना ही नहीं।
0: अच्छा जी इसके अलावा आयशा बतूल वंस अगेन, आपने कहा पता नहीं इंटरनेट काफी दिन हो गए हैं नेटवर्क ही नहीं चल रहा पाकिस्तान में। अच्छा ये वाले इंटरनेट प्रॉब्लम्स जो हैं, ओके। अच्छा वैसे एक बात बताऊँ, पिछले 6-8 महीने से नेट ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो है वो ऐसा हो जाता है कि बस बंदा कहता है कि ना ही चलाए। और ये कई एक जगह की बात नहीं, हर जगह ही ऐसी है। जो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला है, क्योंकि इंटरनेट तो देखो पूरी दुनिया में तरक्की होती जा रही है इंटरनेट के मामले में, और इंटरनेट की स्पीड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, हाँ उस पर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, प्रॉक्सीज वगैरह होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी इंटरनेट की स्पीड जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जितना ऑनलाइन काम शुरू हो गया है पूरी दुनिया में और जिसमें पाकिस्तान भी आता है, सो इंटरनेट की ज़रूरत जो है वो हर एक को है, और हाई स्पीड इंटरनेट की। और सो एनीवेज जी अभी कॉल साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है 0511111 एंड 0519202540 पर। ओके अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात करें, कहाँ से बात करें? सॉरी
2: नजीर कियानी बोल रहा हूँ, रावलपिंडी
0: से। नजीर कियानी बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी नजीर कियानी कैसे हैं आप? अच्छा ये प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हैं। मैंने कहा आप लग नहीं रहा कहीं से प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हैं।
2: क्यों?
0: मतलब आप प्रोग्राम नहीं सुन रहे? यार जब आप प्रोग्राम ही नहीं सुन रहे और आपने प्रोग्राम में फिर कॉल क्यों की है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब कि फर्स्ट कॉलर के ऊपर इतनी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रोग्राम में कॉल कर रहे हो, प्रोग्राम मतलब कि प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो और आप प्रोग्राम में आ कह रहे हो प्रोग्राम ही नहीं सुन रहा, तो मतलब आपने कॉल क्यों मिलाई है? मतलब फिर अब मैं क्या कहूँ ऐसे कॉलर्स को, मतलब कि ये कोई बात तो ना होगी ना। एनी वेज अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, कौन कहाँ से बात करें? अच्छा नाम आपने क्या बताया? अच्छा जाट भाई कहाँ से? लाहौर से कॉल कर रहे हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगे? अच्छा रेडियो की आवाज़ थोड़ा, रेडियो की आवाज़ बंद कर दे, मुझे वापस मेरी आवाज़ आ रही है। इंसान को नहीं, अच्छा वही बात, वही एक एक ही जवाब। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अच्छा चले, थैंक यू अल्लाह हाफिज। वो सलाम का सिलसिला शुरू हो गया और ठीक हो गया, आपका जवाब जो है वो मिल गया। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, नहीं मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सोनिया बात कर रही है। अच्छा
3: हेलो हेलो,
0: जी जी आपकी आवाज आ रही है।
3: क्या कहा मैंने? इनको
0: आपने कहा है ईगो खत्म करें। हेलो, अच्छा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे प्रोग्राम में कॉल्स में प्रॉब्लम्स ही होती हैं। ओके थोड़ी वो समझ आई है। बेसिकली थोड़ा सा जरा पैनल में प्रॉब्लम आ रहा है कॉल्स वाली लाइन में, तो उसको मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा
3: हूँ।
0: चले थैंक यू अल्लाह हाफिज। ऑलराइट जी, मुझे जल्दी से एक ट्रैक की तरफ बढ़ना है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे इसको देखना है, तो अभी मैं वापस आता हूँ तो फिर हम मजीद कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अभी ये प्रोग्राम में ट्रैक पे कर रहा हूँ याया फरीद की आवाज़ में, सो इसको एंजॉय कीजिएगा। हम वापस आते हैं इस ट्रैक के बाद।

0: Alright, listen to welcome back at FM 101 International. My name is Hussain Hussain and I asked you to tell me that if you want to finish something from the world or remove something, तो क्या चीज खत्म करना चाहोगे? सो अपना फीडबैक आप मुझे दे रहे हो 101 एक्सप्रेस मैसेज नाम शेयर का नाम लेकर 4471 पर, साथ फेसबुक पे www.facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर, और लाइव कॉल्स आपकी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे 0511111 एंड 0519202540 पर. सो अभी हम कॉल आपकी शामिल करके देखते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी कौन कहाँ से? आतिफ अब्बासी बाराको इस्लामाबाद से.
1: आप मैं नदी रजा बात कर रहे हैं? मैं जदीद क्यानी साहब को बता रहा हूँ, आपका नाम.
0: अच्छा, नहीं किसको बता रहे?
1: जदीद क्यानी साहब को.
0: अच्छा
1: सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमेशा की तरह आपका, बहुत अच्छा टॉपिक तो ठीक है.
0: ओके,
1: तो मुझे अगर मौका मिले तो मैं दुनिया से आवारा कुत्ते खत्म करना चाहूंगा.
0: ओके,
1: क्योंकि आज गांव से आज भी खबर आई है, चार बकरियां मार दी इन्होंने.
0: अच्छा,
1: हाँ जी. तो देखते हैं, लोग अच्छा अच्छा अपना दे रहे हैं वो जवाब, तो मजा आ रहा है प्रोग्राम का. वो अच्छा प्रोग्राम लेके आते हैं आप.
0: ओके ओके ठीक है. मैं काफी देर से, वैसे मैं जरा सेटिंग शूटिंग जो है उसको जरा चेक कर रहा था, तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ी ठीक हुई है, सही हो गया.
1: में एक बात और है, काफी दिनों से ना आपका ये नंबर मिलाते हैं, जब तो एक लाइन ऐसी है कोई जिसमें कॉल कनेक्ट हो जाती है लेकिन आगे से भी बोलता नहीं है, अपनी आवाज वापिस आ रही होती है. ये लोग और भी लोग शिकायत कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम में, तो ये क्या है मसला?
0: आई डोंट नो, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है.
1: नहीं, टेक्निकल टीम को जरा बताए ना. देखिए
0: असी तो बता बता के थक गए ने, आप तो बताने को भी दिल नहीं करता.
1: वो सुन रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है.
0: नहीं, मेरा तो अब कोई कंप्लेन करने को दिल नहीं करता, तो सच बात है. अब मैं आता हूँ, शो करता हूँ, कोई चीज चल रही हो ना चल रही हो, मैं हैंड्स ऑफ करके शो करता हूँ, दैट्स इट.
1: नहीं, इतने क्यों थक गए आप?
0: बस इंसान थक जाता है, बस आप वैसे भी कुछ शोज के हम बस मुसाफिर हैं.
1: यार पहले तो आप थोड़ी सी क्रिकेट पे बात करते होते थे, अभी टीम गई है तो थोड़ी सी बात तो कर लेना यार.
0: यार क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो गया, क्रिकेट पे मैंने बात करनी छोड़ दी है.
1: वो तो हमारा भी खत्म हो रहा है लेकिन फिर भी बात थोड़ी सी तो बनती है.
0: नहीं, मुझे मजा नहीं आता अब वो दिल ही नहीं है क्रिकेट वाला.
1: मैं बताऊं जी, अभी टीम ने दे दिया, इसका भी अल्लाह हाफिज है.
0: वो खैर मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अब बस अब आगे निकल गए, क्रिकेट से बहुत आगे निकल गए, और ये होना ही था, एक दिन होना ही था ये तो. हाँ, तो अब मतलब कि ठीक है, चल रहा है, बस खेले एंजॉय करें अपना. ठीक हो गया, चलें, थैंक यू, अब तो ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.
1: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, हम करने वाले थे.
0: ऑलराइट जी, आई थिंक अब जो है ना थोड़ी लाइन क्लियर हुई है, तो उसके बाद जो है थोड़ी आवाज जो है ठीक आई है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, कौन कहां से? मैं ठीक ठाक हूँ साजिदा, आप बताएं, ठीक है, खैरियत है सब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक.
0: क्या कहना चाहेंगी?
2: जब भी आते हैं मौसम अच्छा हो गया, पहले बहुत ही गर्मी हो रही थी, आपके आने से ना घर बेहतर हो गया मौसम. तो आप हफ्ते में दो तीन से शो करा,
0: हफ्ते में दो तीन, अब आने वाले दिनों में आपको सरप्राइज मिलने वाला है.
2: अच्छा, चले ठीक है, अच्छा ही हो, गुड न्यूज हो, अच्छी हो. और मैं आपके टॉपिक के बारे में कहना चाहूंगी, जो मुझे मौका मिले ना, तो मैं ये जो हमारे मुआशरे में ना रिपोर्ट कहना हसनैन भाई, ये बहुत ज्यादा आम हो गया.
0: क्या चीज? दोबारा
2: बताइए. डिवोर्स का आम हो गया है.
0: अच्छा,
2: ये मैं खत्म करना चाहूंगी. एक तो हमारे आम लोगों में ना आम बहुत मैं बहुत आ गई है, अक्कड़ है, मैं झूठ, ये बहुत ज्यादा ना आम हो गया. तो ये मैं खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि दोबारा ये पहले कभी होता था, हम सारे लोगों में यानी हम कभी कभी कभी सुनते थे, अब हमारे पाकिस्तान में ना ये बहुत ज्यादा चीज हो गई है. तो मैं कहना चाहूंगी, अगर किसी की बेटियों को आप ऐसे करते हो, बेटियों के साथ सलूक करते हो, या आए दिन हम जैसे सुनते हैं डिवोर्स हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो पहले पहले जमाने में ना ऐसे नहीं होता था हमारे पाकिस्तान में, यानी कि कभी कभी सुनना पड़ता था, अब बहुत ज्यादा हो रही है. तो मैं ये खत्म करना चाहूंगी, ये ना हो चीज.
0: ओके, नहीं तो आप समझती हैं इसमें सारी गलतियां जो है मर्दों की होती हैं?
2: मर्दों की भी होती है आजकल, सास की भी होती है, यानी कि ये घर में ना सास बहू की, बहू की, यानी कि जैसे वो होता है ना, सबर नहीं है हमारे में, सबर और कंप्रोमाइज होना चाहिए, ये हमारे में खत्म होता जा रहा है, सबर खत्म होता जा रहा है.
0: Okay.
2: और एक एक और चीज जो हमारे में ना वो नफरत हो रही है, नफरत वो जरा मैं खत्म करना चाहती हूँ.
0: ओके, ठीक हो गया.
2: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम.
0: चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज. और भाई जी, आयशा जी हमारे साथ लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: जनाब कौन कहाँ से?
3: हजूर नजीर की यानी बोल रहा हूँ. आप तो नाराज भी हो गए हजूर.
0: नहीं, मैं कहाँ नाराज हुआ,
3: मैं नाराज हुए, कॉल आपने ड्रॉप कर दी है. बात ये है कि मैं तो लोगों को कहते रहता हूँ ये कि भाई प्रोग्राम आप सुने, 20-25 मिनट सुने, उसका टॉपिक समझें, उसका टेम्पो समझें और फिर कॉल कीजिए. मैंने आपसे इसमें ग्रामी पूछा, आप नाराज हो गए.
0: नहीं,
3: तो देखिए, जब आपने प्रोग्राम किया होगा तो आपने अपना नाम बताया होगा, क्योंकि मैं आपको पहले कभी सुना नहीं या मेरी आपसे कभी बात नहीं हुई, तो इसलिए मैं आपका नाम जानना चाह रहा था. बाकी तो और कोई, बाकी मैं टॉपिक पे बात करना चाह रहा था.
0: अच्छा, मेरे भाई बात सुने नजीर साहब, आप जब प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर होते हैं ना, जिस तरह आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना, एक प्रेजेंटर की बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रोग्राम में पहला कॉलर जो है वो ऐसा आएगा जो कि प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, लेके चलेगा. अब प्रोग्राम में पहला कॉलर ऐसा है, आपका नाम क्या है, प्रोग्राम में बात क्या हो रही है, तो आप सोचिए हमारे दिल पे क्या गुजर रही है.
3: मैंने ये नहीं कहा कि प्रोग्राम में क्या बात है.
0: नहीं देखे, मैंने सिर्फ, अच्छा सुने ना, अगर आपने प्रोग्राम सुना है तो आपको पता होगा, आपकी कॉल से पहले प्रोग्राम में 10 बार मैंने अपना नाम लिया है. तो अगर आपने नहीं सुना तो आपकी गलती है. ठीक है,
3: चलिए हमारी गलती है, जो कोई बात नहीं है. लेकिन ये है कि मैं तो टॉपिक सुना तो मैंने कॉल की कि मैं टॉपिक पे बात कर लूँ. और मैं तो लोगों को ये कहते रहता हूँ कि प्रोग्राम सुने और फिर सुनकर कॉल करें, ऐसे कॉल करने का कोई मकसद नहीं होता है. तो सिर्फ आप इसलिए नाराज हो गए हैं कि मैंने आपसे
0: जब एक बंदे ने प्रोग्राम ही नहीं सुना तो उसकी वो प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर तो उसे होना ही नहीं चाहिए ना.
3: वो तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ.
0: आप देखिए, फजूल की बहस, प्रोग्राम खराब करने वाली बात, प्रोग्राम खराब करने वाली बात
3: जी.
0: मतलब ना इस बहस का कोई सर है ना पैर है. ऐवें प्रोग्राम में कॉल करके दूसरों का मजा खराब करना, और एक चीज जो है होनी नहीं चाहिए, जो आपकी गलती है उसको आगे लेके चलना, 10-10 मिनट देना, तो इसलिए मैं इसको दोबारा ड्रॉप कर देता हूँ. यार मतलब प्रोग्राम में कोई बात हो रही है, आप कोई बात करें, गलती है आपकी है, आप चुप कर जाए यार. हाँ, मैंने, आप खुद सोचें कि आप कोई आपको दुनिया देख रही है, ठीक है, आप एक बड़े स्टेज के ऊपर आए हैं, एक जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वहां पर आप जाके कहते हैं यार वो हो, मैं तो भी सो के उठाऊं, क्या हो रहा है, ठीक है, और आपको सबसे पहले माइक पकड़ा दिया, तो मतलब कि ये तो इस तरह तो नहीं होता ना. आप जहां पर देखो, जहां पर लिस्टर्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसी तरह एक प्रेजेंटर, सिर्फ मैं नहीं कोई भी होगा, उसकी भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पहला जो कॉलर है वो प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, आगे लेके चलेगा, तो उसको ज़रा एनर्जेटिक होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए प्रोग्राम में क्या होना चाहिए, हो रहा है और क्या बात करनी है, बजाय इसके कि वो कहेगा जी आपका नाम क्या है, मैंने तो प्रोग्राम सुना ही नहीं है. अब ऐसे कॉलर को मैं क्या एंटरटेन करूँ, मुझे बताएं, मैं उसे क्या बात करूँ, एक बंदे ने प्रोग्राम ही नहीं सुना, उसे मैं क्या मैं उससे बात करूँ. तो खैर, मैं क्या कह सकता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम.
4: रजा साहब, बहुत दिनों के बाद बात हो रही है. साजिदार बात कर रहा हूँ लाहौर से.
0: जी साजिद भाई, खैरियत है, सब ठीक ठाक हैं?
4: बिल्कुल ए वन.
0: क्या कहना चाहेंगे?
4: तो आप बिल्कुल, आप जो मतलब टॉपिक रखते हैं अच्छा होता है, लेकिन हम क्या कर सकते, बेबस हैं.
0: क्यों?
4: इंसान फ्लाइट तो करता है, लेकिन कर कुछ नहीं कर सकता.
0: नहीं तो फिर भी ख्वाहिश तो करनी चाहिए ना. अगर ख्वाहिश ही खत्म हो जाए तो फिर जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाए.
4: आजकल ये देखें, बड़े बड़े घराने जो है ना, मनुष्यात की वजह से तबाह बर्बाद हो गए. ये एक ही लानत खत्म हो जाए ना पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की भी करेगा, और ये जो है ना जो सिलसिला इस मशियात का चल गया है और यूनिवर्सिटियों तक कॉलेजों तक ये खत्म होना चाहिए, लेकिन खत्म हर एक बंदा अपने दिल से बुराई खत्म करे और दूसरे को अवेयरनेस दे कि ये जो है ना हमारे लिए बहुत खतरनाक है और हमारी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही, तब जाकर ये बीमारी खत्म होगी और ये लानत जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये मंशात फरोश है, सबसे पहले तो इनका जो है ना मैं खात्मा करूँ। और वो कहते हैं ना चोर को ना मारो, चोर की माँ को मारो, कि चोर की जब माँ खत्म हो जाएगी आगे जन्म देने वाली कोई नहीं होगी, फिर चोर जब पैदा हो जाएगा तो फिर आगे उसने गलत रास्ते में हर इंसान को लगाना है। ये है आपको तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हसीन समाजों को मेरा सलाम लाहौर से अनिल साहब भी आएगी।
0: नहीं नहीं नहीं अच्छा ये सलाम दुआ नहीं, सलाम दुआ नहीं प्लीज
4: जी,
0: मैंने कहा अपनी बात करके देर से।
4: नहीं मैं बात तो मैं कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना सर, बहुत लोग ये अरबों खरबों के मालिक हैं, उनके बच्चे जो है ना इस लानत से।
0: ठीक है ठीक है चले साजिद भाई, थैंक यू वेरी मच, अब
4: बहुत
0: ख्याल रखें
4: और बहुत तकलीफ होती है। ठीक है
0: चले, बहुत शुक्रिया,
4: मंशियात का सिलसिला जो है ना खत्म हो जाए।
0: ठीक हो गया चले, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और भाई जी कॉलर्स हैं हमारे साथ, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
5: आवाज आ रही है?
0: जी आप बिल्कुल ठीक आ रही है।
5: मैं सोनिया बात कर रही हूं।
0: जी सोनिया कैसी हैं आप, कह रही थे?
5: अब पहले से देखती हूं।
0: ओके गुड,
5: अगर मेरा बस चले तो मैं सबसे पहले कानून का निजाम सही कर दूं, अमीर गरीब के लिए बेहतर।
0: नहीं मैंने सही करने की बात नहीं की, मैंने कहा कि दुनिया से अगर कोई चीज
5: रिमूव करना है खत्म करना है आपका, तो ईगो ईगो टाइगर और जो दुकान को ये हटा देना चाहिए। अगर हम नहीं दे सकते तो खामोशी बेहतर है, किसी को धुतकार ना लेनी चाहिए।
0: धुतकार ना लेनी चाहिए? नहीं मुझे आपकी बात समझ नहीं है, पहले आपने ईगो की बात की फिर आपने धुतकार
5: हाँ,
0: की बात
5: ईगो भी कह रही हूँ। मुझे सबसे बुरी लगती है ईगो, बिना वजह की ईगो, छोटी छोटी बात पे ईगो करके मुंह फुला के रखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे जाती तौर पर नहीं करती है ऐसा, नहीं करती ना कि खुद के दूसरों को नसीहत को नहीं, लेकिन इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
0: ओके
5: मैं किसी से नाराज होती हूँ, 3 दिन बाद खुद ब खुद मैं उससे माजरत भी कर लेती हूँ। और सेकेंडली आपकी एक जाती सी बात है, मैं पूछ सकती हूँ?
0: नहीं मैं पर्सनल अपनी पर्सनल बातें मैं
5: शोध नहीं करता। ये कहना था कि आप तो कह रहे थे मैं एफएम कभी नहीं छोड़ूंगा।
0: मैंने कब कहा था मैं एफएम कभी नहीं छोड़ूंगा?
5: नहीं आप हमेशा कहते हैं मैं आपको कब से सुनी, खैर वो आपकी जाती जिंदगी कीजिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको रखेंगे।
0: चलें थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। और भाई जी कॉल्स आपकी हैं और देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
6: हसनैन भाई परवेज से इस्लामाबाद।
0: जी परवेज भाई कैसे हैं आप, खैरियत है सब?
6: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आज तो ठंडी हवा चल रही है जी आपको माशाल्लाह।
0: चले अच्छी बात है, मौसम अच्छा है।
6: और सब ठीक है सही से?
0: जी जी क्या कहना चाहेंगे?
6: बस मैं ये कहूँगा कि मेरा वैसे मैं सफाई करता भी रहता हूँ अपने खुद हाथों से, ये गंदगी के ढेर वगैरह जो होते हैं ना वो कचरा पड़ा होता है, ये खत्म करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सलाहियत भी दिया, मैं खुद आगा अपने हाथ से झाड़ू लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बहुत से काम किए।
0: बिल्कुल,
6: उससे बड़ा दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। तो ये काम हमें खुद करने चाहिए सर, यहाँ गंदगी के ढेर होते हैं, बदबू वगैरह आती है, सफाई जो है ना ये बहुत अच्छी चीज है, इससे ये बीमारियां वगैरह फैलती है, ये हमें खुद करनी चाहिए। ये नहीं करनी चाहिए कि अपने घर से उठा के दूसरे की किसी गली में फेंक दे, नहीं वहाँ जो पड़े होते हैं वो क्या नाम है उसको क्या कहते हैं वहाँ डालते हैं, और ये सफाई करनी चाहिए। ये हमारा बहुत प्यारा मौसम है और यहाँ की अब माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मौसम अल्लाह तला ने दिए, कि हमने अपने हाथों से काम करना है, खाली मुंह से नहीं करना है सर, इसको अमली काम करना है इसको। तो आपका शो हसनैन भाई हमेशा की तरह अच्छा होता है, आपकी एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगी है, ऐसी आदतें होनी चाहिए इंसान के अंदर। और बाकी फजूल जो है ना ज्यादा फजूल बातें नहीं होनी चाहिए, ये एक जहर है कि बड़ा प्रोग्राम है माशाल्लाह 101 बहुत 3 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, नाइट की ड्यूटी होती है। तो अनजीर भाई साहब जो आपको भी اچھا وہ بھی کالر ہے ناراض نہیں ہونا سب کو سلام اللہ حافظ صاحب اللہ کو سلامت رکھے اللہ
0: تھینک یو اللہ حافظ All right, جی 051111111 and 051920250 آپ سے میں نے پوچھا جی مجھے بتائیں کہ دنیا میں سے کوئی چیز اگر آپ کو ختم کرنی ہو یا ریموو کرنی ہو تو کیا چیز ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں ٹھیک ٹھاک ہوں نام بتائیے کون کہاں سے جی زارا کیا کہنا چاہیں گی
7: سب سے پہلے آپ کے ٹاپک پہ بات کروں گی جو یہ سوشل میڈیا پہ نیگیٹو کانٹینٹ ہے اس کو ریموو کرنا چاہوں گی کیونکہ اس سے بہت سارے بچوں کا مائنڈ خراب ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے پیرنٹس بجائے سمجھنے کی جان بوجھ کے اپنے بچوں کو موبائل دے رہے ہیں اس بات میں میری اپنی بہن سے بہت زیادہ بحث ہوتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ یہ کارٹون دیکھے کارٹون نہیں ہوتے وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہماری سوچ میں بھی نہیں ہوتی
0: اوکے
7: نہیں
0: تو آپ نیگیٹو کانٹینٹ کو ختم کرنا چاہیں گی یا موبائل فون بچوں کو دینے سے ختم کرنا چاہیں گی
7: بھائی کانٹینٹ ختم کرنا چاہوں گی کیونکہ بچوں کو تو میرے چینل سے تو کوئی رکے گا نہیں نا اس لیے کانٹینٹ کو ہی ختم کر دوں گی کیونکہ آج کل بھائی بڑے لوگ اتنی بدتمیزی اور ایسے ایسے کانٹینٹ بنا رہے ہیں کہ دیکھنے کو دل نہیں چاہتا یقین مانو میرا ہی نہیں دل کرتا
0: نہیں تو لوگ اسی طرح کے لوگوں کو تو مشہور کرتے ہیں
7: جب کتنے پاگل لوگ ہیں بھائی آپ کیسے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کرنا چاہیے جن سے سیکھنا چاہیے میں خود بہت کچھ سیکھتی ہوں
0: لوگ کہتے ہیں کہ اگر کرٹیسائز نہیں کرو گے کسی کو تو اس کا نام نہیں ہوگا
7: اور ہم لوگوں نے ساری چیزیں ہم لوگوں کی سوچیں جو خراب ہیں
0: اوکے ٹھیک ہے نیگیٹو جو کنٹینٹ ہے اس کو آپ ریموو کرنا چاہیں گی صحیح ہو گیا اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ
7: اور میں آپ کے ساتھ ہی ارجنٹینا کو سپورٹ کروں گی انشاءاللہ وہ جیتے گی
0: لیٹس سی میچ بڑا
7: ٹف
0: ہے چلیں تھینک یو آپ کا خیال رکھیے گا ذرا اللہ حافظ اور رائٹ جی نیگیٹو کنٹینٹ السلام علیکم جی اللہ کا شکر کون کہاں سے
8: سر جٹ گل کر رہا سر لاہور تو سر تہاڈے ٹاپک تے گل کر رہا کہ اگر آپ ہی صحیح کہہ رہے سر اگر میرے واسطے چھے نا تو میں سارا ٹچ موبائل بالکل ختم کر دیں صرف بٹنا والا موبائل ہونا چاہیے انسان کو
0: اچھا ٹھیک ہو گیا چلے آپ ہی کال پہلے بھی آئی تھی دوسرے کو موقع دیتے ہیں ٹھیک ہے
8: اوکے سر اللہ حافظ خیر ہے تو
0: اللہ حافظ اور جی بات دیکھو ایسی ہے کہ دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے السلام علیکم سو دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جو دنیا میں ہو رہا ہوتا ہے مطلب آپ موبائل فون پوری دنیا استعمال کر رہی ہے تو اس میں ایپس ہیں وہ دنیا استعمال کر رہی ہے سو آپ کو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو مطلب ایپس کسی کام کی نہیں آپ استعمال کریں لیکن دنیا کے ساتھ لیول پہ رہنے کے لیے آپ کو بھی پھر وہ ایپس اور وہ ٹیکنالوجی جو ہے یوز کرنی پڑتی ہے تو پھر ہی آپ دنیا کے ساتھ چل سکو گے اگر نہیں یوز کرو گے تو آبویسلی پھر آپ بہت پیچھے رہ جاؤ گے اینی ویز یہ باتیں آپ کے ساتھ چل رہی ہیں آپ کی لائیو کالز ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں آپ کے میسیج ہمارے پاس آ رہے ہیں اور ان کو ہم ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل کرتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ قمر یو کے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ استین بھائی میرا بس چلے تو میں دنیا سے ظلم ختم کروں گا جیسے پیلسٹائن میں ہو رہا ہے اور دنیا سے ناانصافی ختم کروں سب کو انصاف ملے اور باقی میں انگلینڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور معذرت سے بٹ ایجپٹ ارجنٹینا سے جیت چکا تھا میچ فیئر نہیں ہوا تھا استین بھائی یار میں اس کے اوپر زیادہ قمر بھائی بات نہیں کروں گا اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گا میں جتنا ارجنٹینا کو فالو کر رہا ہوں نا اگر وہ گول آپ چلو ایک فاؤل یا گول اگر ایجپٹ کو مل بھی جاتا نا ارجنٹینا نے ان کو پھر بھی ہرا دینا تھا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو سائن کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جتنی سپیڈ سے ارجنٹینا کھیل رہا تھا آخر میں انہوں نے ایک اور گول کر دینا تھا تو بات یہ کہ بعد میں ایکسکیوزز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اور گیم میں ایکسکیوزز نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے شاید میرے سے لوگ اختلاف بھی کریں لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں رونالڈو اور میسی کی جتنی ٹسل ہے ابھی سے نہیں بہت پرانی 15-18 سال سے جو ٹسل ان کی آپس میں ہے, جب بھی میسی آگے چل رہے ہوتے ہیں رونالڈو کے فینس جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا, اور وہ ایسا ایسا کانٹینٹ بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ کہ وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور جب رونالڈو آگے جا رہے ہوتے ہیں تو میسی کے فینس بھی ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ دیکھو اس میں میسی کی قسمت ایسی ہے کہ ارجنٹینا کی ٹیم جو ہے نا اوور آل وہ بہت اچھی ہمیشہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور رونالڈو کی قسمت جو ہے لک جو ہے وہ تھوڑی سی خراب ہے اس میں کہ پرتگال کی ٹیم ان کو اس طرح سے اچھی ٹیم ملتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ایز اے ٹیم کھیلے, ورنہ اگر لیگ میچز میں اور کلب میچز میں اگر رونالڈو کو دیکھو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز ہے, تو لیکن جب وہ اپنے ملک کی ٹیم سے کھیلتے ہیں تو وہ اس کیلیبر کی نہیں ہے جو ارجنٹینا کی ٹیم ہے. میرے بات سے ایگری کریں نہ کریں, لیکن کیونکہ پرتگال جو ہے وہ جلدی آؤٹ ہوگی, میری فرینڈ لسٹ میں بہت سارے رونالڈو کے فینس ہیں جنہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ میسی کی ٹیم کیسے آگے نکل رہی ہے, تو میں ان کے کامنٹس وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, اسٹیٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں, تو میں صرف مسکرا رہا ہوتا ہوں کہ چلو کوئی بات نہیں. تو خیر فیضی ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, آپ نے کہا کہ حسنین بھائی دنیا میں ڈالر سسٹم ختم کیا جائے تاکہ ہر چیز فری ہو, ٹیکس ختم کیا جائے ہر چیز کا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں دنیا میں ساری چیزیں فری ہوں, لیکن ایسا ہو تو نہیں سکتا کہ ساری چیزیں دنیا میں فری ہوں. اچھا رم نواز ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, آپ نے کہا کہ جب پیسے نہیں ہوں گے تو لوگ سب ایک جیسے ہوں گے, کسی کو کوئی لالچ نہیں ہوگی. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں رم نواز کہ اگر پیسے نہیں ہوں گے تو کسی کو کسی سے لالچ نہیں ہوگی, کیسے اتنی شورٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اچھا ٹھیک ہے چلیں ایک دو اور میسیج ان کو میں تھوڑی دیر بعد پروگرام میں شامل کرتا ہوں, اور ابھی مجھے ایک ٹریک پہ کرنا ہے. نیکسٹ ٹریک آپ کے لیے میں نے کیوں کیا ہوا ہے عادل اسلم کی آواز میں, اور ٹریک کون سا ہے

0: वेलकम बैक टू एफएम मोनो इंटरनेशनल में बहुत ही जबरदस्त ट्रैक आप आदिल वसलम की आवाज में सुन रहे थे। और ये ट्रैक वैसे उस्ताद मुसफ़त अली खान साहब ने जब गाया था तो उसकी तो खैर क्या ही बात है, लेकिन जो है कि ये मैंने रिमिक्स वर्जन प्ले किया जो आदिल वसलम ने दोबारा से इस ट्रैक को गाया अपने अंदाज में। खैर आप मुझे बता रहे हो कि अगर दुनिया से आपको कोई चीज़ ख़त्म करनी हो या रिमूव करनी हो तो आप क्या ख़त्म करोगे। सो अभी कॉल हम प्रोग्राम में शामिल करें 0511111 0519202540 और साथ आप मैसेज सेंड करें 101 स्पेस मैसेज नाम शह के नाम लेकर 4417 फेसबुक पे www.facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम,
1: कैसे हैं?
0: मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हक नवाज सालपिंडी से बात कर रहा हूँ
0: जी। हक नवाज क्या कहना चाहोगे?
1: भाई आपकी शो सुनकर जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो आज मैं बुखार में मुब्तला हूँ, पूरा जिस्म पूरी तरह टूट रहा है, लेकिन आपकी आवाज ने, आपके शो ने मुझे मजबूर कर दिया आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए।
0: ओके थैंक यू। क्या कहना चाहोगे फिर? चलो गेट वेल सून।
1: थैंक यू सो मच। मैं ये कहना चाहूँगा असलम भाई कि मैं ना दुनिया में अगर खत्म करना चाहूँ ना तो जेलसी खत्म करूँगा।
0: जेलसी खत्म करूँगा कैसे? कैसे खत्म
1: करूँगा? फॉर एग्जांपल जैसा कि अब आप हैं, अल्लाह ने आपको पैसा दिया, इज्जत दी, रिजक है तो इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दी, शोहरत दी, मतलब जो कुछ भी कमाया आपने अपने स्ट्रगल के मतलब जोर से कमाया ना, अगर कोई दूसरा बंदा आके बातें करने लगे कि यार सेंट पास इतना पैसा आ गया, इतनी दौलत आ गई, कैसे आ गई, क्यों आ गई, ये किस किस तरीके से कमाए इनने, भाई देने वाली जात जो है वो अल्लाह की जात होती है। तो इस तरह की गीबत करना ये तो सबसे बड़ी जो है ना वो गुनाह कबीरा में आ जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे से हसद ना करें, जलसी ना करें, प्लीज बस अपने काम से काम रखे, किसी काम में इंटरफेयर ना करें, बस कुछ इस तरह जिस से मत चल रहा है बस उसे चलने दे।
0: इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। जो अगर कोई अपने जिंदगी में लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है तो खुश होना चाहिए यार, अच्छी बात
1: है। जाहिर है, जाहिर अगले बंदे को खुश होना चाहिए कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी अता किया, अल्लाह ताला हमने भी अता करे, बस ये दुआ मांगनी चाहिए, माशाल्लाह कहना चाहिए। अब मुझे जो भी जहाँ भी कहीं कोई मतलब कोई बात मिलती है ना, कोई अच्छा किसी को मतलब कोई जॉब मिलती है या कोई अच्छी पोस्ट पे चला जाता है तो सबसे पहले मेरे मुँह से माशाल्लाह निकलता है।
0: होना भी ऐसे चाहिए,
1: होना भी ऐसे।
0: लेकिन हम कहते हैं ये कैसे आगे निकल गया, इसको भी जरा गिराए।
1: हाँ ये कहते हैं और ये नहीं कहना चाहिए ना सर भाई, ये बिल्कुल गलत बात है।
0: ठीक हो गया,
1: कैसे कमा ली उस बंदे ने पैसा, इतनी जल्दी कैसे अमीर हो गया, ये कैसे मतलब है इतनी जल्दी मतलब मोटरसाइकिल एक बाइक से गाड़ी पे आ गया।
0: जरूर जरूर।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus.
1: ये जिंदगी भी अजीब है ना साहब, कि एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है।